धन तो बिडाऊ उन उफम दाई वो तो कनान दाई तू आर हे दाई दाई बा ना तो कनान उन्ने दाई तू अओ ऊ तक कग इंदिया को तल्लागे उगुमा शाम में का कन उमिया सवास से मल्ला बाकरा फकै ऐने उजल आबरे तो अराओ इन उन उजल देवात कित्ते अराव की के आन अरे हमट अब की के बेतुनाती दा इन्हें तो कनान अरिवोन मीनान उम्बरियो हदीदा ने तो कनान अंतुन सरिवेत अमसे इन इन द तुगराया हसमत कते तुगराया हसमत कते ना गोदी इन इन द ते मदारिस ते बगरी अब्बा काय अरे रे व मदरसा इतरबे गदद इयाव अगरी अब्बा कायो इताते भाई इवन नै वविन का वे कैने इवन नो बेन ओदोर तुगराया अंकेरे ने तुगराया व उन तालीम व ओकना सेकु साकु एक्यान एनेनेन निसरीवे तुकना तूना तुगराया अगरी अपते मदारिस वितायक तालीम किवार एदने एफे इंबरे महउम्मी आबे एदने हे अरे तालीम किवार एदने हे अरे उगरो कुकनाउक अगरी सातिंदिए उन तखलाव ते भी आया मसाजिद ते भी आया आन अरे दिफ्ती त्वेन मीनान अगरी सेन मीनन वाविन अगरी सेन मीनन एहे नको इंबरे बेतित अगरी इतनी तूना अर्री हो उनु धाई तोना हो ऐसा कोना उनु तक उंगाल इवी नहीं लिगे इंदियो बेन ओदोर नान अगरियानी आई त्या तुगराय तुकना नान अकवासी हो एन तो तुगराय बारोक रंशी दो लही त्यारे योग दानात दात नहीं आया गरो योग दानात दात नहीं उत्तुक ताबा हुआ तुगराया हुआ तो कनान उंबतु दाईत तो कनान तिहाई महीने का अमा कित मल्ला अरे वे न तेफ इन यार अगरीत ते मदारिस सनताम ना भदित के तिमतित मल्ला ताम ना वे का तिमने उन ताम ना असगुतेन उपताने अंकेरे बा अंकेरा ना ताने अगरीत मलो तुमर्रा हो मही तुमर्रा हो इंतहन उमित अरे ताली ते भी आत आली थी तुजाम अते भी आया बेतुन अरे वे न तेफ तुन मीनान अलमेहनी एदनेत बेन मीनान वाईसोक वही शगाम तेत का रायते है उम्बतु अमाक कित्ते मेहनी हुए असेनाई या इतने तो इम्बता अमाक की के उदयन तो बिड़ावे हिनें दाई ना निसरी वोकना एम बली बने दोकनो भल्लान दाई ना बे मारना दाई था आती बा दाईन दाई था आती दी मर हिने तोकना रेने को बेतुनाती दा एम बली बने दोक उन्हों तालीम एकातीब का दाई शल्लीके का दाई वो गुदिये का दाई वो भल्लान इन्हीं का दाई वो तिवी नहीं तगरी इतनी का दाई बेतुनाती दा हिनें उन ओधाई इवाविन अगरी थी नाद एकानीने तोन उन उमर उकना वयोक तेहे ना कित्ते अको फंदीने का उम बेत के रफे का ए अरे तालीम उकना सातीत शालिक ना तेकानीये दो खयिस का हमसे बारुक उमरुक अगर इतनी हो बित अगर हो वकई उमरुक दिफा बाको अगर ये तित नाद कंती तो उमरुक के मेशुए तू नहीं है सन हन अब अगर उमीनो खाए उमरुक सूर बेत सके तू नहीं है तो ग्राया दीते ना किथा विलम दीते ना किथा उन ओमीन माउमी आवेद ने है तालीम के बार याद नहीं अरे अरे को सनाया को अगर ये है ने बेत इतना तो इते कनी तू नहीं है हिनिन ने सरी हुए तुकना तू ना तालीम हुआ तो कनान हुआ दाई था आती हुआ दाती बेन बारो ने सरी हो अने नुकनान गुदा नफर निकते अगर या नहीं अल्लाह ममिया नहीं तू आओ इंदा अकई अगर या नहीं अरे हो ना गुद इम्तहान ओमिया नहीं तिजाम अशुमिया निकते वारिब नात इकन नहीं तिमेहानी बेने वही सुननात एक निकते बेतुनाती दा उन तालीम असें तीर ओकना सूर स्तोभ ओकना बरो ओकना फायदा थोय बेतायक मदर रा थोय किता उत्तुनाती दा इन हिनन तालीम ने सरी ओकना तुकना ने सरी ओकना अरे तुकना तो ओकना तिकतीत का दाई तो उत्तुनाती दा इन हिनन हुई नशा तेने ने नहरू वाविन तिकतीने दादिस तिकतीने तालीम हसमा ओकने कतीक वरिब कतीनेक उन ओमिन सकनायानात मीन का गिराया दग्रीसेने तेफेने इंबते बेनात कन्ना तुकताव कन्ना तुगराया कन्ना।

नात कन्ना बेतु नाती दाय इन्हें एम बलिव ने दोखना नात कन्ना तलवान उत्तु तलवा तुकाना हुआ उदामान उम्बरो बरे बाका इन वे न केता उत्तु नाती दाय ताली मल के बारे अन्य अनें देवा वे निकातीने अरे वा अगरिया इतारबे गदत या वे कातीने उन अरे वा सनायक ने एफिन वारे एहिन सकनाया आना तिंदिवा रात आना सल्ला रात आना नात कंतित गरोक तेरा तेरा शिदना गरोक ते शुइना दहियोक न दायन नात दाते नाय उन तालीम होइ से क्वातित गदित वाशा भीम उदयुन तुबड़ावी उत्तु नाती दाय तुगरायाती नशाते का बकेना हिनिन सरीव तुक न तून कस्तु दाई थाई तुआ शबूब तुआ आन उन धाई तुक अकेती तरु धाई कदाय का बे इकता म्यादित बेत्तु नाती दाय अग्रिया ननिया दोकना लममा ननिया दोकना नातकन ननिया दोकना गरोक अमशबाब ननिया दोकना गले करो अमशबाब ननिया दोकना थीदद्दे तवा ननिया दोकना अग्रिया वो अग्रिया अब्बा का अग्री सा ननिया दोकना अरे वो अग्रिया अब्बा का गिराया ती व्या का ननिया दोकना उत्तु नाती दाय इन्हें शबूब तो दाय थाई तो अनिसरी वोकना बेत्तु नाती दाय तलीम इब्न शातिकाब अकेना तो कनंत इब्न शातिकाब अकेना एने निस्तिर होकना ने